मन मह सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सधान ठाकुर कर तल धरया। जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत न पारा भरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुध जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जीत मारे जी, तू जिया का दा तारा। हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरवाण। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुगम है सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी, तिन टूटे जमकी फासी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी, तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करहे हर पूजा जी, तप तप हे जप हे बेअंत। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत साहित जी, कर क्रिया खड़कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुर जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नह चल करता सोई। तुर आपे भावै सोई वरता जी, तू आपे करहे सो होई। तुरे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुर आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई। जो तो भावै सोई थी से, जो तू देह सोई हम पाई रहा। सब तेरी तू सब नी त्याया, जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया हो सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, बिजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जान आए हे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, चेत सर वरड़ा भई ले निवासा। पानी पावक तनह किया, पंकज मोह पग नहीं चाला। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत समूढ़ मना।

अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहराम। काल पुरख की देह मोह कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस क्रोर जलेस दोहराम। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखत नेत सुर्गवास रघुवर करा सगरे पुरी समेत चौपाई। जो एक कथा सुना अर गावै दुख पाप तह निकट न आवै। विष्णु भगत की ये फल होई आद ब्याद छ सक न कोई। सम्मत सत्रह सहस बचावन हाड़ बदे प्रथम सुख दावन। तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परे लहो लिहो सुधारा दोहरा। नेत्र तुंग के चरण तर सतद्रव तीर्थ रंग श्री भागवत पूर्ण कियो। राघवर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सवाद बबाद। ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

अनेक कहें मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक न जाने श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो ही बखाने दोहरा सकल द्वार।

पौड़ी जिथे तू समरथ जिथे कोई नाही उथे तेरी रख अग्नि उदर माही सुनका जमके दूत नाए तेरा छुट जाहे भौ जल बिखम असगाहो गुरसबदी पार पाही।

0: बल जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर के गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासें हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नूं सिमराऊं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करना उन दे आवे ताई। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी
1: वाहेगुरु।
0: पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मुरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपिया वंड की छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी
1: वाहेगुरु।
0: जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़ी तां नारियां नाल चरवाए सिखी सिदक केसां श्वासां संग निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी
1: वाहेगुरु।
0: पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी
1: वाहेगुरु।
0: प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चेता वै चेता मन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथिया रहाए देग तेग फतेह। बिरद की पैज रहे पंथ की जी श्री साहिब जी सहाए। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा संभालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दे माण सतगुरु नेताणियां दी तान न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ अरदास बेनती है। आप जी दियां महान बख्शिशां रहमतां दा सदका पावन हजूरी विखे संध्या वेले दे दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज दा प्रकाश दिहाड़ा मनाउंदिआं होइआं पावन हजूरी अंदर सुधर रहि राज साहिब जी दे पाठ होए बाणी पढ़दिआं अनेकां भुल्लां हो गईआं होणगीआं अलपाक जान के खिमा करनी अगों वास्ती समत बख्शणा अमृतमई बाणी दा पहाओ दर आईआं संगतां दे हिरदिआं च वसाउणा सरबत दीआं तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनीआं दरों करों नाम दान सिक्खी सिदक भरोसा दान सरबत दी कारज रास करने शुभ मनोकामना संपूर्ण करनीआं पावन दरबार दी हाजरी भरदिआं सेवक परिवार वल्लों अरदास बेनती है। सतिंदर वीर सिंह वल्लों अपनी अते परिवार की तंदुरुस्ती चढ़ती कला वास्ते अरदास बेनती है। सतगुरु जी मेहर करनी समूह परिवार के सिर ते रहमतां भरे हथ रखना तंदुरुस्तियां की दात बख्श के कृतार्थ करना बख्शे हुए खजानों विचों समूह संगतां वल्लों कड़ा प्रशादी देग दर ते हाजर है परवान होया प्रशाद सरबत साध संगत च वरताउण की आग्या होवे पावन हुक्मनामे बख्श की संगतां नूं कृतार्थ करो सही प्यारे मिलो जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता वे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

आप मुक्त मोहि तारा जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवा सिबत खसम दे नूरे अरसों कुरसों झटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दे कटिया सतनाम

तार जगने बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जन को मुक्त युक्त हर के नाम जन को तृप्त भुक्त हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कपरे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कृष्णाय मिजोग जन रता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप्रव दीना हर हर जन कह उठ सताने हर प्रताप जने अवर न जाने उत्पो जन रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपे हर का भक्त पट नहीं छपे हर की भक्त मुक्त भव करे नान जन संकेत तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुंद दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रद बसे संत प्रताप दुर्त सब नसे संत का संग बड़ भागी पाइये संत की सेवा नाम ते आइये नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पिखे सर्व टंडोल पूज स्नाही हर हरे नानक नाम मोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बनमदे फिरया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना

पते ते बहु मूच बहु सियाण जमका भौ व्यापे अनक जतन कर त्रिशन नान त्रापे भीख अनेक अग्नि बुझे कोट पाव दरगे नि सिजे छूट सुनाही उपे आल मोह व्यापे माया जाल आवर करतूत सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जब तो दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साथ जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सतगावे जे को अपनी शोभा लो रे साथ संगे हमे छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साथ जना की सड़नी परे जिस जन को प्रभु दर्स पे आसा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संजा का मिटे मान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हो सगल किरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना माने अपने ते बुरा मिटाना पिखे सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन समदिष्टे तार नानक पाप पुन्य लेपा निर्तन को तन तेरो नाउन थामे को नाउ तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटांको देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटांके अंतर जामी अपनी गतमित जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवन जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उत्तम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन मकानी

तुमरी कृपा में सुख नेरे। कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम्ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक दीन हार पर छोड़ के लागे आन सुहाए नानक कहू न सिजई बिन नावे पत जाए अश्परी। दस

रंजन चन प्रतम करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आप है आप आव करतन वेरा किसे दूर जनावत किसे बिजावत नेरा भाव सियान सगल ते रहत सब किस जाने आत्म की रहत जिस पावे तिसले लड़ लाए थान थनंत रिया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमुख निमुख जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अलो मोह बिनस जाय अमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकर को रख मन माए जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ते आए सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग त्याव लुभावे जे प्रसाद सुजे मन आठ पैर ताका जस गा विजय जे प्रसाद तुम सब को माने मुक्ता को जस रस मकाने

मन सुख पावे हर हर जस कहत, जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन शरणी पर ठाकर प्रभु ताके, जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे, जे प्रसाद भूखन पहरी, जय मन ते सिमरत क्यों आल सकी, जय जय प्रसाद असव हस्त सवारी, मन तिस प्रभु को कबू नाम सारी, जय प्रसाद भाग मिलक धना राग, प्रोहे प्रभु अपने मन जन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सत से त्याई, तिसे त्याई जुए क लखे, इहां उहां नानक तेरी रखे, जे प्रसाद करे पुन बहु दान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस पर को साथ साथ चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरो सदा अनूप, जय प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात, जय प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नान जस कह, जय प्रसाद सुने करन नाथ, जय प्रसाद पेखे विस्मात, जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुसह जय बसना, जय प्रसाद हस्त कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है, जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुसह समावे, ऐसा प्रत्याग अवर कतला को, गुर प्रसाद नानु मन जागो, जय प्रसाद तुम प्रकट संसार, तेस प्राको मूल न मनो विसार, जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर्त ताको जाप, जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा सूरे, जय प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू तासु राच, जय प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपे जब सोए, आप जपाए जपे सो नाओ, आप गाव आए सो हर गुण गाओ, प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दया ते मतु तुम होए, सर्व निदान प्रभु तेरी मैया, आपो कछु न किन्हू लया, जिज लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु न हाथ, श्लोक आगम अगाद पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की आचर्ज कथा अष्टपदी, साध के संग मुकुजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग परटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बढ़ने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा इसमानी, साध के संग गुच्चर मिले, साध के संग सदा प्रफुले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमदरस पुंचा, साध संग हुए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतू तावे, साध संग स्थित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कह संग महा पुनीत, साध संग कैस्यो नहीं बैर, साध के संग न बिगा पैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही ओ ताप, साध के संग तजे सब आप आपे जाने, साध बढ़ाई नानन, साध प्रभु बने आए, साध के संग न कबू तावे, साध के संग सदा सुख भावे, साध संग बस्त गोचर लह, साधु कह संग अजर सह, साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पूछे, साध के संग दृढ़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कह कुर्बान, साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साज नमीर कुटुंब निस्तारे, साधु के संग सोतन पावे, जिस तन ते सा को बरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग सोवा सुरदेवा, साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सबल जन्म, साध के संग ने कछ काल दर्शन भेट होत निहाल, साध के संग कलूक धारे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग यहाँ वहाँ सोहेला, साध संग बिछड़ तर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म, साध हृदय वसे नानक उदरे, साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग नमनते विसरे, साध संग सर्प निस्तरे, साध के संग लगे परम मीठा, साधु के संग घट घट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी,
साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सने देता वख्याने। साध की उपमा तै गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद ना पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एक सबिन कोए। नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सब को शोक। ब्रह्म ज्ञानी कह दिश समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कहती हिरजे ज्यों बसदा को खोदे को चंदन ले। ब्रह्म ज्ञानी का यह गनाओ नान ज्यों पाव का सह सुहाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लगे जला। ब्रह्म ज्ञानी कह मनोय प्रकाश जैसे तारे ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान। ब्रह्म ज्ञानी कह नाय मान। ब्रह्म ज्ञानी ऊचे ऊंचा मन अपने है सबते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पै नान जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर में आ। ब्रह्म ज्ञानी ते किस बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार ममाहा। ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो भला ब्रह्म ज्ञानी सुबल भला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नान ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग।

ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोज जय महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सकल कार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उधारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमख निमख ठाकर नमस्कारे, नानक हो अपर सगल निस्तारे, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रिया, रूप न पेखे नेत्र सादगी टहल संत संगेत, कर्ण ना सुने काऊ की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद भिख्या पर हरे, मन की वासना मनते डरे, इंद्रिय जत पंच दोग ते रहत, नानक कोट मदेखो ऐसा, परस वैष्णो सो जस उपर सो प्रसन्न। विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत होवे न कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल के ईर्षा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मंत्रे अंतर सिमरन गोपाल, सभी ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़े अवरह नाम जपावे, नानक हो वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल ते आगे दुष का संग, मन ते बिनसे सगला भरम कर पूजे, सगल पार ब्रह्म साध संग, पापा मल खोवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नतनीत, मंत्रे अर्पे विष्ण प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रमोदे, राम नाम आत्म में सोदे, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नावे, वेद प्राण सिमद बूझे मूल, सुखम में जाने अस्तूल, चौं वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौं वर्णा में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतरे उड़धारे, बस प्रेत मुक्त पात्र को तारे, सर्व रोग का औखध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काउ जुगत किते ना पाइए धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संदन भातिन पाया, सदा निक निक नर जान, सो दास दर गए प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा आत्मित आवे, जीवन मुख सो कावे, तैसा अर्क तैसा सोग, सदा आनंद तन विजोग, तैसा स्वर्ण तैसी माटी, तैसा अमृत तैसी विखाटी, तैसा मान तैसा मान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत नानक ओपर कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जिज्जत कर रखे तैसा तन्नाओ, आपे गण करावन जोग,

श्लोक उस्तत करे अनेक जाने अंत न पारावार नानक रचना प्रवृचि बहु वध्यानक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट चार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भरमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कव का विचारे कई कोट नवतन नाम ते आवे नान करते का अंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट पैगा आत्म निकोर कई कोट पर दर को हिरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया सरमाए कई कोट प्रदेश परमाए जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पौन पानी वे संतर कई कोट देश पू मंडल कई कोट सजे सुन खतर कई कोट देव दान मिंदर सर शतर सर समग्री अपने सूत धारे नान जस जस भावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राज ताम साध कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास्त कई कोट किए रतन समंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जाके प्रसाद कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच सबते नेरे सबूते दूर नान गया लिपत रहा भरपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुर निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बोजोनी फिरे कई कोट बैठती खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चंद जय जय भाणा तय तय राखे नान सब कुछ प्रभ कह आते कई कोट भय बैरागी राम नाम संत लिव लागी कई कोट प्रभ को खो जानते आत्म में पार ब्रह्म लानते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिलियो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पाप ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्न नान ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट हुए अवतार कई जुगत कीनो मिस्तार कई बार पसरे पसार सदा सदा एक अंकार कई कोट कीने वोपात प्रभते हुए ब्रह्मा समाध ताका अंत न जाने कोय आपे आप नान प्रस होए कई कोट पार के दास तिन होते आत्म प्रकाश कई कोट तत के बेते सदा निहारे को नित्रे

जो मंदिर को थामे थम्मण ते उंगर का शब्द मने अस्थम्मण जो पाखान नाव चढ़ते रहे प्राणी गुर चढ़न लगते निस्तरे जो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन होए बिगा जो महान ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बादशो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर का है बिलाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देव हार अवर त्याग तू ते जितार जोगिश करे सोई सुखमान भूला का है फिरे जान कौन बताई तेरे संगम

प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभ पालन आरा सेवक की राखे ननकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक सास सास मारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाए अपने सेवक को नाम जपाए अपने सेवक की आप पात राखे ताकि अदमित कोई न लाखे प्रके सेवक को ना पहुंचे प्रके सेवक उचे उचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया निकी किरी में कल रखे भस्म करे लश्कर कोट लाखे इसका सास न काटत आप ताको राख दे कर हाथ मान सुजतन करत बात जिसके करता बिरथे जात मारे ना रखे अवर ना कोए सब जिया का रखा सोए काए सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रवाल बढ़ानी बार बार बार प्रजपिया पी अमृत मंदन द्रपिया नाम रंजन गुरमुख पाया दिस जब ना दिष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जन तिपताने मंतन नामे नाम समाने उठत बैठ सोभत नाम कहो नानक जन के साध काम बोलो जस जे बा दिन रात प्रभ अपने जन की नी दात करे भक्त आत्म के चाहे प्रभ अपने सो रह है समाय जो हो आहो वत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म शाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आड़ पैर प्रभ से जूरे को नानन से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओटले मंतने अपना तिन जन दे जन जने अपना प्रभु बुझाता सो जन सर्व दो का दाता तिसकी सन सर सुख पावे इसके दर सब पाप मिटावे अवर सियान सगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग श्लोक सत पुरख जन जानिया सतगुर तिसका नाउ तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदि सतगुरु सिक्की करे प्रतपाल सेवको गुरु सदा दयाल सिक्की गुर दुरमत मल हरे गुरु वचनी हर नाम चिरे सतगुरु सिक्के बंधन काटे गुर का सिख बकार ते अटे सतगुरु सिक्को नाम धन दे गुरु का सिख बड़भागी है सतगुरु सिक्का हलत बल सुवारे नानक सतगुरु सिक्को जी नाल समारे गुर के ग्रह सेव जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह आप उसको करकश ना जनावे हर नाम हृदय सत्य आवे मन विच सतगुर के पास तिस सेवक के कार्ज रास सेवा करत होए ने कामी दिसको होत प्राप स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक है आपने किस परम सहज सियाण बुलाया न जाइए नानक ऐसा गुरु भागी पाई है सवन दर्शन बेगत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर कह गवे सुनकर बंज करन गाने मन संतोख आत्म बदिया ने पूरा गुर आख्यो जाका मंत्र अमृत पेके हुए संत गुण में अंध कीमत नहीं पाए नान जिस पावे तिसलय मिलाए जे भाए कुस्त अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचित प्राणी गम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन न पाई अनक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे सत बलिहारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने

आनंद जा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बन मन को किस को गनी जावे के अरगम पार तब नरसुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब से सदका होक दिठाए जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडार कवन कद डरे आपन चलते आप करने आर नान ठाकर गम पार आप नासी सुखी अपने आसन दह जन मरण को कामना सन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त के पूछ लेखा जब नारंजन गोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही चर्चा नानक आपन रूप आप ही प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पद होता तय बिन मैल कहो कह धोता जय नंजन अंकार निर्माण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शल शिद्र लग्न को कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तय किसे भू कवन तिपतावे कर्ण करावन करने हार नानक करते का ना समा जब अपनी शोभा अपने संग मनाए तब कवन माए बाप मित्र सुध भाए जय सर्व कला आपे प्रवीण दैद देव का कौचीन

वैव सरुना जाई तीर्थ नामा जित पावा विण पाने के नाई करी जे तिस रिटियो पाई वेखा विण कर्मा के मिलाई लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई जे जुग चारे अर जा होर दसुणी होए नवा खंडा विच जाणिया नाल चले सब कोई चंगा नाव रखाई कै जस किर जगले जे तिस नजर ना आवई तां वात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दो सीधो तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे ते हा कोई न सुझै जे तिस गुण कोय करे सुनै सद पिर सुरनाथ सुनै धर तवले आकाश सुनै दीपलो पाताल सुनै पोय न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सर्व ब्रह्मा इंद्र सुनै मुख सलाहन मन सुनै।

संतो ज्ञान सुनया सरकाय सुनान सुनया पढ़ पढ़ पाव है मान सुनया लागे सैत्यान नानक भगता सदा बिगा सुनया दुपाव का नास सुनया सरा गुणा के गाल सुनया सेख पीर पाता सुनया दे पावे रा सुनया हाथ वे असुगा नानक भगता सदा बिगा सुनया दुपाव का नास मन की गद कही न जाए जे को कह पिछे बचताए कागद कलम न लिखन हार मन का बह करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन सुरत होए मन बुद्ध मन सगल पवन के शुद्ध मन मोह चोटा न खाए मन जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पशु प्रगट जाए मन मग न चले पंथ मन धर्म सती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन पा

असंख्य जप असंख्य भाव असंख पूजा असंख तपताव असंख रनमुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंग पद गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सूरम पाकसार असंग मोहल्ले विलायचार कुदरत कमण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तद भाव साई परिकार तो सदा सराम निरंकार असंख मूर्ख अंधकोर असंग चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंग अलवड़त्या कमाहे असंग पापी पाप कर जाहे असंग कुड़ियार कुड़े फिराहे असंख मलेच मल पाख खाए असंग निंदे से कराए पार नानक नीच का है विचार वारे आना जावा एक वार जो तुद पावे साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंग थावा गम अगम असंख लो असंख आचर पार हुए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखान जन लिखे ते सिर नाहि दे फरमाए ते ते पाए देता गीता ते ता नाव विण नाव नाहि को थाव

सुनया मनया मन के तपाओ अंतर्गत तीरथ मरनाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोय बिन गुण किते भगत ना होए स्वास बाणी बरमाओ सत स्वान सदा मंचाओ कवन सवेला भगत कवन कवन सच कवन वार कवन सरुति माह कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती दे होए लेख पुराण वक्त न पायो कादियां दे लिखन ले कुरान थे तो आ न जोगी दाने रत माह न कोई जा करता श्री टी को साजे या पे दान सोई के क्रिया का के सलाहे क्यों वर्णी के दाना नानक आखण सबको आखा एक दो एक सियाणा वड्डा

बंद खलासी भाणा होए हो राख न सकै कोए देखो खाय के आखण पाए ओ हो जाण जेतिया मोहे खाए आपे जाना आपे दे आखे से पेके के जिसनो बख्शा सिवत साला नानक पातशाह पातशाह अमल गुण अमल व्यापार अमल व्यापारी अमल भंडार अमल आव अमल ला जाय अमल पाए अमल ला समाहे अमल तरम अमल दीवान अमल तुल अमल परवान अमल वशिष अमल निशान अमल कर्म अमल फरमान अमल अमल आख्या न जाए आख आख लिवलाए आख वेद पाठ पुराण आख पढ़ कर वख्याण आख बरम आख इंद आख गोपीता गोविंद आख ईश्वर आख सिद्ध आख कित कित बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुन जन सेव कित आख आखण पाए कित कह कह उठ उठ जाए इते गिते होर करे ताय आखन सकै कही के देवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए देखो आखे बोल विगाड़ ता लिखे सिर का बारा गावार सो दर के हसो करके आज तुवे सर्व संभाले वाजे नादाने का शंका के ते वावण हारे के ते राग परिस्यो कहियन के ते गावण हारे गावह तो नुपुण पाणी बै संतर गावह राजा धर्म द्वारे गावह चित गुप्त लिदाना लिख ले धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंद्र दासन बैठे देवत्या दरनाले गावह सद सुमाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखे सब दुग दुग वेदना ले गावह मोहनिया मनमोहन सुरगा मच पाया ले।

आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सो एका बार का कर वेख्या सृजन हार नानक सच्चे के साची कार आदेश से आदेश आदा नीला नादा नाह जो दुगे को वेश

चढ़िया हुए अकीस सुनगल्लाय आकाश के टाया इरेस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर छुपेने जोर जो न मंगण दे न जोर जो न जीवन मरण है जोर जो न राजमाल मन सोर जो न सुरती ज्ञान विचार जो

खंड के बाणी रोहत ते काड़त कड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कतिया न जाए देखो कह पिछे बचताए तिथे कड़िय सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िय सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे और न कोई होर तिथे जोत महावर सूर तिरमय राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता महमा माए ताके रूप न कथने जाए ना उमरे न ठाके जाए जिनके राम सा मन माहे तिथे भगत सा कह लो करै न सच्चा मन सोए सचखंड वसे निरा

खतना कर डासार जात बहारा तेरे सुने आर आरण मत वेदा त्यार पाओ कलागन तवताओ पांडा पाओ अमरताल कड़िया सब सचेटक साल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल स्वरूप।

चकर बकर फिरे चदर चक मानी पुरतीन लोक 14 के विखे जग जापी जय जाप आदेव नाद मूर्त आप्यो सबे जय थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सर्वच्यो स्वंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो भरम रायत भूत लख भेस।

सर्वा दे गंजे गा दे सुभांग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है शिष्य है सूत है के नरकम प्रणास है पृथ्वी प्रवास है नुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है नुक्त सदा है सद निरुक्त सदा है विपुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है चाची छंद

जल धन मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अंश जंग आसन भंग उपमा पार गत मित उधार जल थल मंड निस्मित भंड जल

अकलं कृत है सर्वकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है भजंग प्रजा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंतान संसाद रूपे नमो परम तत्व अतत्व स्वरूपे नमो जो जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलाकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नाद विभूते

सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तेजी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकुन को सब गुण सुख दियो, सदरन को पल मोहबत कियो, कट कट के अंतर की जान्द, भले बुरे की पीर पछान, चीटी ते कुंचर दूला साप पर कृपा दिशकर पूला, संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी एके की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जबद कर करा करता राम, प्रजा तर तब देह पारा, जब करख कर दो कबू, तुम मैं मिलते दर सबू, जेते बदन से सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे आत निरालम, जानत भेद भेद यार आलम।

बैठा कम सिंह प्यो शंकर कैठा सगरी सिट दिखाए चंभव आज जुगात सुरु स्वंभव आप रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट देव उठवत बाता सकल मलेश करो रण काता जी अस्तु दसणी परे तिनके दुष्ट दुख में मरे पुरख जवन पव परे तिहारे तिनके तम संकट सब टारे जो कल को एक बार

बचाए, कृपा करिए अंबर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सबराता, केलवे सकल देह को हरता, दुष दोखियन को जय करता, श्री अद्जा पै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ काला, मन वंजित बल पावे सोई, दुखनत से व्याप्त कोई एडल, सुने गुंग जो जाय सरस न पावे, सुने मूर चित लाए चतरदाय आवे, दुख दर्द पाओ निकट ना, तिन नर के रह हो जो जाकी, एक बार चौपी को के चौपी, सम्मन सत्रह सहज पण जय, अर सहज पण तीन के जय, भाद्र सुधि अष्टम रविवार, तीर्थ तद्रव गंध सुधारा, स्वय पाएंगे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तेरे नी आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक है मत एक न मान्यो, सिमर शास्त्र वेद।

सहमरीर छया करे भले सोहनयाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

रहायो। पन मथरा मूरत सदा थेर लाहे चित सनमुख रहो। कल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेतर हो। सो कहो टल गुर सेवी है एहनस सै।

दर्शन परसे हैं गुरु के, जन्म मरण दुख जाए सतनाम। श्री वाहे गुरु साहिब जी सुही, महला चौथा। जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर

दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला छूटा, तिस जन का हाँ बलिहारी, जिन सिष्ट सा

असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठे असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचारे असंख सती असंख दातारे असंख सूरम।

असंख मूर्ख अंध कोरे, असंख चोर हराम खोरे, असंख अमर कर जाहे जोरे, असंख गल वढ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाए, असंख निंदक से

हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझया जा बेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई, कहे नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलया देव दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए, सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी सच अलख बिडाणी ताकि गत कही न जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचे सुनने न पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख के बाजा पवन बजाया, बजाया बाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी, इक न दसवा द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नवनिद तिसदा अंत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के बाजा पवन बजाया, एहो साचा सोहिला सच कर गावो, गावो त सोहिला कर सच जिथे सदा सच त्यावे, सचो त्यावे जात दपावे गुरमुख जिना बुझावे, एह सच सबना का खसम है जिस बख्से सो जन पावे, कह नानक सच सोहिला सच कर गावे आनंद।

उतरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर।

काटे सो पाप तिन नरों के, गुरु रामदास जिन पायो, शतर सिंहासन पीरथ मी

ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੈਨਿਟੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਊ ਧੇਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੋਫੀਕ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਖੀ ਸਰਵੜੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਭਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧ ਢਾ ਦਿੱਤੀ, ਝਾੜ ਫੂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਟਰਮ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਧਿਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਪੀਲੂ ਕਾਣਾ ਛੱਜੂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਫਰਕ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ, ਹਿੰਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਹਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਖੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਏ ਬਰਥ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ, ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬੀਰਬਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰੇਤ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਬਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤਵੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਟਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
महाराज सचे पातशाह गुरु अर्जन साहब नूं बेनती करदे आ, कहण लगे सतगुरु जे तुसी हुक्म करो जहांगीर दी इट नाल इट खड़का दे। मेरे हजूर अपनी इस शहादत दे राही जड़े लोग मौत दे सहम थले जिंदगी बतीत कर रहे सी, जिन्हां दी जिंद निर्जिंद हो चुकी सी, जिन्हों दाने सज्जन लिखते ने मरना मुणसा सूरिया हक है जित होए मरण परवाणो। कोई बंदा कई बीमारियां नाल पीड़ित होवे, ब्लड प्रैशर स्थिर ना होवे, शूगर वधी होवे, ते डॉक्टर कहिंदा भी तेरा ऑपरेशन करांगा, पहला तेरा बॉडी अंदर टिक जाए। ते महाराज गुरु अर्जन साहब की शहादत दे बाबत जग जाहर ए बात है जिन्हां दियां रूहां दे विच मौत दा सहम घर कर गया सी, जिहड़े कहिंदे सन चोर ते लाठी दो जने मैं ते बापू कल्ले, जिहड़े ऐलान करदे सन संसार दे विच काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पुकड़ी, चिड़ी कुड़े डर से मर जाओ, दुश्मन से कैसे लड़ पाओ। ते गुरु प्यारी साध संगत तवज्जो दे के समझिया जे महीना गर्म जिन्हों आप गुरु ग्रंथ साहब दे विच पढ़ते हैं असाड़ तपंदा तिस लगा है, हरनाह ना जिन्ना पास, उहदे तो बाद तवी गर्म, उहदे तो बाद रेत गर्म, सुभा करके जिन्ने बंदे उत्थे खलोते ने मुर्तजा खान शेख अहमद सरहंदी बीरबल वह सारे दे सारे गर्म, जिस वेले उस तप दे माहौल दे विच साईं मियां मीर आया है ते उहदा भी रंग लाल हो गया ते हजूर कोलों आग्या मंगदा है, ते महाराज धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहब उस सारे तपते हुए माहौल दे विच तत्ती तवी दे उत्ते बैठे ने ते सिर दे विच गर्म रेता पाया गया है, ते मेरे गुरु ग्रंथ साहब दे बचन ने गुर दाता गुर ही वै कार गुर दीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज शांति दे मुजस्मे शांति दे पुंज बिल्कुल शांत चित बैठे ने। दाने सज्जन ने चार हरफ लिखे ने बड़े कमाल दे, चार तरफों अग बरसे सेक सी तन साड़दा, छाले छाले हो गया जुस्सा सच्ची सरकार दा, साई मियां मीर डिठा हाल आ जद यार दा, हो व्याकुल रोपिया चीके ते ताही मारदा, सुन सतगुरा कहा मियां छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप रहा हम शांत हैं हरि नाम से, क्या हुआ तन तप रहा हम शांत हैं हरि नाम से। ते जे कोई भुलड़ मनुख ए अल्फाज वरतद कदे भी के गुरु साहब ने गुस्से दे विच आ के कदे कोई फैसला लिया, ते गुरु प्यारी साध संगत दाने सजना ने जग जाहर ए बात रखी गुरु अर्जन साहब दी शहादत दे कारण। सब तो पहला ते अहम वड्डा कारण गुरु नानक पातशाह जी महाराज दे घर दी चढ़दी कला, दूजा कारण जिस वेले साईं मियां मीर हरिमंदर साहब दी नींह रखदा है ते सिखी तो मुतासर हुंदा है, जहांगीर दे कोलों ए बर्दाश्त नहीं होया। तीजा वड्डा कारण पीलू काणा छज्जू छाऊ सैन जिस वेले अपनी रचना गुरु अर्जन साहब दे कोल लै के आए, उन्हां दी थां गुरु ग्रंथ साहब दे विच ना बनी, हजूर ने आखिया भाई तुहाडी बाणी नूं दर्ज नहीं कीता जा सकता, उन्हां दी नाराजगी ने भी इस गल नूं तूल दिता। बीरबल लगातार जिहड़ा बिल्कुल मौके दे उत्ते कारण बने है, वह की कारण है साध संगत के धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज दे उत्ते ऊज लाया गया है कि जहांगीर दा पचंगी उस नूं गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज ने राज भाग दे वास्ते आशीर्वाद दिता है, ते जिस वेले ओ गल भी झूठी साबित होई ते फिर तुझ के जहांगीरी दे विच जो कुछ जहांगीर ने अपनी बायोग्राफी दे विच संसार दे सन्मुख उजागर किया, जड़ी सुचानंद वाली घटना है उस नूं छुटिया दिता गया, ते कौम दी झोली ए दात पाई के भाई मंझ वर्गे सखी सरवड़ियां दे आगू जिस वेले महाराज सचे पातशाह गुरु अर्जन साहब दे सेवक बनदे ने
एक होर जरूरी बेनती करके दास ने तुहाडे कोलो माफी मंगनी है। साध संगत महाराज सचे पातशाह गुरु अर्जन साहब की शहादत ने यह दो गल्लां जग जाहर कीतियां। जुलम करन वाला किड्डा जालम हो सकता है ते जुलम बर्दाश्त करन वाला किड्डे हौसले वाला हो सकता है। एक गल दूजी गल जे संसार दे मना विच्चों मौत दा खौफ कढ़ना सी ते गुरु प्यारी साध संगत अज दुनिया दे वड्डे प्रचारक यह गल कहिंदे ने स्टेजां दे जे कोई बंदा दुनिया विच यह गल कह रहा भी मैनू मौत दा सहम डर नहीं हैगा ते उहदे दो ही कारण ने जां तां उह सिख होएगा ते नहीं तां उह बंदा झूठ बोल रहा होगा। सिर लथ योधियां दी कौम बाबा दीप सिंह होरां ने जदों सिर तली दे उत्ते रख के दुश्मन दे नाल जंग लड़िया ते इह लखायक इह प्रतीक है इस गल दा कि महाराज गुरु ग्रंथ साहब की छानो छौकत वास्ते दरबार साहब की छानो छौकत वास्ते ते धर्म दियां कदरों कीमतां नूं अपने जेहन अंदर रखण वास्ते गुरु प्यारी साध संगत मैं पहला भी बेनती की फिर दोहरान लगा गुरु अर्जन साहब द्वारा गुरु हरगोबिंद साहब नूं इह हुकम पंज प्याले पंज पीर छटम पीर बैठा गुर भारी अर्जुन काया पलट कै मूर्त हर गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा वड योधा बो पर उपकारी दलां नूं नेस्तो नबूद करन वाले गुरु हर गोबिंद साहब पातशाह जी महाराज नूं गुरु अर्जन साहब ने हुक्म लाया हर वेले 2200 घोड़ सवार अपने नाल रखने ने जबर का मुकाबला असा सबर नाल करना है पर ए चेते रखिया जे हथां बाज करारियां वैरी मित ना होए जे भाई शांति बना के रखनी है ते हर वेले जंग वास्ते प्रपेयर रहना तैयार रहना ते महाराज सचे पातशाह ने गुरगद्दी दे उते बहिंदिया ए ऐलान कीता गुरु पंथ नूं कौम नूं भाई सानू चंगियां जवानियां दी लोड़ है घोड़ियां दी लोड़ है अस्त्रां शस्त्रां दी लोड़ है ते ए वचन जिहड़े भाई नत्थे अब्दुल्ले ने आखे दो तलवारां वधियां एक मीर दी एक पीर दी एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीर दी आखिया पग तेरी की जहांगीर दी ते गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज चार जंगा लड़ के भगती शक्ति राज योग संत सपाही रबाब ते नगारा ते गुरु प्यारी साध संगत विशेष रूप दे विच हरमंदर ते अकाल तखत दा जिहड़ा कंसैप्ट गुरु नानक साहब ने संसार दे विच लियांदा उस नूं जग जाहर कीता संसार दे विच उजागर कीता। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहब वर्गी शख्सियत जिन्हां ने सारी उम्र शांति दी खुशबू खिलारी है जे भाई उन्हां दे हिस्से तत्ती तवी आ सकदी है ते फिर भाई मैनू नहीं जापता कि जिस रूप दे एडा वड्डा महापुरख ती रागां दे विच गुरु ग्रंथ साहब की बख्शिश गुरु ग्रंथ साहब वर्गा ग्रंथ संसार की झोली विच पाण वाला महापुरख जे भाई हकूमत सल्तनत सिस्टम उन्हां दे हिस्से तत्ती तवी लिया सकदा ते मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा सां जिस सिख ने हजूर नूं सवाल कीता तन मन काट काट सब अर्पी विच अगनी आप जलाई हजूर कहन लगे लोग लिख के बोल के गुरु ग्रंथ साहब दे अर्थ करनगे पर गुरबाणी ते जिंदगी दी लोह है ये सिख दे सुभाव विचों सिख दे किरदार विचों प्रगट होनी है। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कृपा बख्शिश करन समाप्ति करदे हां कोई रसना वांझी ना रह जाए सारे रल के कृपा करिया जे गुरबड़

0: आखिर विच फिर इस ढाडी जत्थे दा बहुत बहुत धन्नवाद बेनती करते हैं इन्हां नूं कि जदों भी इन्हां दा टाइम लगे फ्री मॉन दी स्टेज नूं जरूर टाइम दिंदे रहन। इस तों उपरंत साढ़े पास ट्रेसी तो मेरे वीर सुखदेव सिंह जी आए ने जो कि एक बच्चों का उपराला लैके आ रहे हैं जिस दे संबंध में अगले हफ्ते उन्होंने कोई उत्थे मीटिंग भी रखी है। ट्रेसी वो आके आप जी ना दो मिनट लिए विचार सांझियां करनगे भाई सुखदेव सिंह जी। उस तो उपरंत आनंद साहब का पाठ होगा।
1: परम सत्कार योग सर संघ जी मुख पवित्र करदे हुए दसवें पातशाह जी की बख्शी हुई फतेह बुलंद करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। 92-93 विच आप जी संगतां दे जोड़े झाड़न की जो संगतां नूं सेवा बख्शी सी गुरु पातशाह जी ने उस तो बाद अज आप जी दर्शन कर रहे हैं। साढ़े सत्कार योग वीर जी बैठे ने भैणां बैठियां ने बहुत मन खुश होया कि साढ़े गुरु घर विच इस तरह संगतां चढ़दी कला दे नाल गुरु चरणां दे भौरे बन के गुरु चरणां दा आसरा लै रहियां ने। सो अज थोड़े समय च इक बेनती करन लई संगत दे कहे मुताबक कि एक जो साढ़े बच्चे ने अमेरिका दे विच बॉर्न होए ने साड़ी जो पनीरी है गुरु नानक पातशाह जी दी फुलवाड़ी है इसनू जो इत्थों दे स्कूलां विच जो पढ़ाई करदे ने उहदे विच चैलेंजेस आउंदे ने उहदे नाल की हुंदा है कि असी 5 दिन उन्हां पब्लिक स्कूलां जांदे ने 1 दिन दी पढ़ाई गुरु घरां च करदे ने ते असी उसनू न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे ते ए इक वड्डा चैलेंज है जिसनू असी सिर जोड़ के सारे वीरां भरावां ने भैणां ने कदे विचारिया नहीं। उहदा नुकसान यह होया कि जदों बच्चे 16 साल दे वड्डे हो जांदे ने ते वह अमृत छकिया हुंदा है गतका भी क्लासा भी गुरमत गुरबाणी सारा कुछ सीखते ने वड्डे होके जदों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जॉबां ते चले जाते हैं हौली हौली ओह गुरमत तो दूर चले जाते हैं क्योंकि जिहड़ा सोल फूड गुरबाणी का मिलता सी बचपन चो 16 साल तो बाद असी नहीं दे पाते कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म इंस्टॉल नहीं कर सके। गुरुद्वारे साहब तो स्टाकटन गदरी बाबे ने 1886 के उन्होंने नींह पत्थर रख के गुरुद्वारे बना दिते सी पर उदों उन्हां दी सैलरी जिहड़ी 50 सेंट ही हुंदी सी पर आवर आह रेल दियां लाइनां विछाइयां सड़कां उन्होंने बनाईयां गदरी बाबिया ने सरदार करतार सिंह सराबा बाबा सोहन सिंह पकना जी ते बाबा तेजा सिंह जी एम ए जिन्होंने बाद च बड़ू साहब की नींह रखी एड्डी वड्डी गुरमत अकैडमी ते बड़ू साहब अकैडमी बनाई जिथे 70-80 हज़ार बच्चे तंतकी साजा नाल आसा जी की वार का कीर्तन करते हैं ते गुरमत विच परपक ने गुरमत दे धारनी ने। सो भैणां नूं बेनती है कि 2 मिनट जरूर आपां गुरु चरणां च बैठ के अपने बच्चों का सवाल है उन्हां नूं किवें आपां गुरु चरणां दे नाल जोड़ के रखना उस ते गल करनी है। कोई जाओ ना कि मीटिंग रखी है सारियां संगतां वल्लों जिन्हां दे मन विच इह दर्द है कि साडे बच्चों नूं असीं भावें बहुत मेहनत कीतियां गुरु घरां दीआं कमेटियां ने बहुत मेहनत कीतियां बहुत समय चो समां कढ के उह अपने रुझेवियां चो समां कढ के गुरु घर दे जो स्कूल चलाउंदे ने गुरु घर चलाउंदे ने बहुत वड्डी सेवा है साडीआं प्रबंधक कमेटियां दीआं गुरु घर चलाउणा बहुत वड्डा जानी चैलेंज है पर संगतां दे सहयोग नाल जिहड़े गुरु घर चला रहे ने सानूं गुरमत दी सेध दे रहे ने बहुत वड्डा उपराला है। परंतु जिथे इन्ने वड्डे उपराले असीं कर रहे हां उत्थे एक जिहड़ा मेन उपराला सी कि बच्चियां नूं 5 दिन पब्लिक स्कूलां च भेजदे हां साडी मजबूरी है 1 दिन असी गुरु घरां दे विच जो उन्हां नूं खालसा स्कूल दे विच उन्हां दी असी गुरमत विद्या पढ़ाउने हां गतका सिखाउने हां उहदा इह साडे सामने जो आया है अंकड़े आए ने कि भी उन्हां नूं न्यूट्रलाइज नहीं कर पाउंदे जिवें इन्हां स्कूलां विच स्मोकिंग आम है ड्रग्स आम है एंटी सिक्खी जेंडर चेंज है ये अज तक असी विचार नहीं किया भी घर विच जिन्ना मर्जी जोर ला लईए पर जदों आपां भी पढ़दे सी घर विच जिन्ना मर्जी जोर ला लईए पर जदों आपां भी पढ़दे सी कॉलेज यूनिवर्सिटियां विच पंजाब दे विच

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर के गुरु नानक रही त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमराउ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर समरै करण दे आवे ताई सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ

लाली पंथ जलंधड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली सतनाम श्री वाहिगुरु जी सूही महला चौथा जिनकाय अंतर वसया मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त भए जिन हर नाम ते आया तिन पवित परम पद पाए जिनकाय अंतर वसया मेरा हर हर तिन की सब रोग गवाए ते मुक्त भए जिन हर नाम ते आया

नानक आपी वीख हर बिगसै गुरमुख ब्रह्म विचारो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरुश्वरी साध संगत जीओ, तनता दे योग हो अमृत वेले तो लैके इस वेले तक गुरु दरबार दियां हाजरियां भर के अमृतमय बाणी दे कीर्तन सरवण करके, कथावां गुर इतिहास सरवण करके अपने जीवन दियां अनमोल कड़ियां धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी दे अंदर बैठ के शिकारथ कर रहे हो। सतगुरु की रहमत करन आप समूह संगतां दियां हाजरियां दर प्रवान करन, दरों करो नाम दान सिखी सिदक भरोसा दान, सरबत नूं सतगुरु जी चढ़दियां कलां दी दात बख्शिश करन। सो इत्थे ही दीवान दी समाप्ति है, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की

हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोल, हीरा हाथ छूट गई संसारी। नाम नू हीरा रतन कई नावां दे नाल सतगुरु गुरबाणी च दर्ज कीता, वह लैके बैठा साडा साडा शाह अंदर निज घर महल दे विच। हुण जदों तुसी आरू रास पूंजी इकट्ठी कर लैंदे हो, इहदे बदले च फिर मिलदा वो नाम रतन। हीरे जमा करा रहे हो, सुहासा नूं हीरे कहा, पर इहते मोहर ला के करायो,